0: अरे कुछ तो बता
1: ना ना ना ना ना
2: कैसे हो किरा FM
3: dengarkan Kedah FM 97.5 Suara Harmoni.